बुद्ध कंते लोक हटाए ठाठ भयो मैं जोर कर वाह वाह गोविंद सिंह ठाठ दर्शन

0: सो गिर ही सुदास उदासी जिन गुरमुख आप पछाणे। आओ थोड़ा अपनी असलियत वाल नजर मारिए। मैं एक सवाल उठाना हां, असी सारे जितने इत्थे ग्रिस्ती बैठे हां, कि साड़ी जिंदगी दी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी ये है कि असी अपने आपे दी खोज करनी है, इसका अपने अंदरों उत्तर लभो, अपने अंदर रिफ्लैक्ट करो, अपने अंदर ध्यान नाल इस गल का जवाब लभो कि तुसी जिंदगी दे विच, असी जिंदगी दे विच कि यही मुख काम जो है उसनू अपने मुख रखिया होया है अपने आप नू पहचानन दा, जां ये कोई इशू ही नहीं है साड़ी लाइफ का, जां ये कोई साड़े वास्ते खास कोई समस्या नहीं है, जां ये कोई साड़े वास्ते बहुत अहम चीज नहीं है, इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। अपने अपने अंदरों जवाब लभण की साथ संगत कोशिश करो। गुरु बाबा जी की हजूरी दे विच असी बैठे हैं ईमानदारी दे नाल कि असी अपने आप की खोज करन दे वास्ते भी कोई टाइम निकालते हैं या नहीं निकालते, जां कुछ साडा ध्यान है इस पासे या नहीं, साडी सोच है इस पासे या नहीं है, कि असी अपने आपे की खोज करन दे विच लगे हुए हैं जां दिनों दिन अपने आपे नूं गवाई ही जा रहे हैं, खोई ही जा रहे हैं। गुरु बाबा जी ने स्पष्ट आख दिता है कि सो गिर ही ओही ग्रिस्ती असल ग्रिस्ती है, ओही सन्यासी असल उदासी है जिसकी जिंदगी का आदेश एक ही है कि उसने अपने आप नू लभना है कि मैं कौन, मेरी असलियत की है, अपने मूल नू पछानना है। महाराज जी ने साडे ते सवाल भी किया है, कहते हैं सुनो रे तू कौन, कहां ते आयो, कहते भी तू कौन है, कितों आया है, तेन इस चीज की खबर है। बस जिस दिन तू ये लभ लेगा कि तू कौन है, जिस दिन तू ये पहचान जाएगा कि तू कौन है, उस दिन कहते हैं अपना आप पछाणिया नाम निधान पाया, अपने आपे नू पछानना ही नाम की प्राप्ति है। कोई पूछे नाम की प्राप्ति की चीज है, नाम की है, अपने आपे नू पहचानना ही नाम की प्राप्ति है, और अपने आपे नू पहचानन तो बाद के मैं आ हां, फिर मैं अपने आप नू असल तौर पे प्यार करांगा कि मैं आ हां। जब किसी नू ये पता चल जाएगा ना कि मैं कौन हां, उस दिन उसनू अपनी असली हस्ती का पता लगेगा जो कितनी महान है, वो प्यार करन दे योग है, और फिर उसनू ये भी नजर आएगा कि ये जो दूसरे हन ये कौन हन, मेरे ते इना अंतर की है। उत्थे जाके ड्युअलिटी द्वैश मेर ते सब खत्म होएगी जदों अपने आपे दी पहचान हो जाएगी। सो गिरही सो दास उदासी जिन गुरमुख आप पछाणिया। सो ग्रिस्तियां नू इस भुलेखे च, इस टपले च, इस गलती गलत फहमी च नहीं रहना चाहिदा कि असी इना दुनियावी रुझेवियां दे विच इतने रुझ जाइए अते इतने सुस्त हो जाइए, इतने आरामदेह हो जाइए, इतने लेजी हो जाइए कि एक सन्यासी साधु वर्गा जीवन ग्रिस्ती का भी होना चाहिदा है, ते ओ ना हो। आपनु नहीं बुझिया कोई भी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो ग्रिस्ती है, चाहे कोई काजी है, चाहे कोई मुल्ला है, चाहे कोई जंगम है, जोगी है, पगवे पेघवाड़ा है, कोई भी चाहे है, जितनी देर तक अपने आप की पहचान नहीं कर लेंदा अकाल पुरख की दरगाह दे विच कहिंदे ओ बख्शिया नहीं जाएगा। कहिंदे हन काजी मुल्ला होवे शेख, कोई काजी होवे चाहे कोई मुल्ला होवे, साडे वल लगा लो कोई भाई होवे, ग्रंथी होवे, कीर्तनिया होवे, कोई शेख होवे।
1: जोगी जंग में भगवे पेख,
0: कोई जोगी होवे, कोई जैन मत दा होवे, कोई भगवे पेख वाला होवे। कहंदे हन
1: को गिरही कर्मा की संग,
0: चाहे कोई गृहस्थी होवे, गृही होवे, जिहड़ा सारे कर्म कुर्म ते निभांदा होवे, कदे पाठ करा लिया, कदे लंगर करा लिया, कदे तीर्थां ते जाए, दर्शन दीदारे कर आए, अते बाकी दुनियावी जिम्मेवारियां भी सारियां निभांदा होवे, लोकाचारी भी पूरी करता होवे, को गिरही कर्मा की संद, सारे कर्मा नूं पूरी तरह मिलांदा होवे, करदा होवे, पर कहंदे हन

हमारी जेबा एक रूप हर के गुण अगम अथाह हम क्यों कर जाए आया हर तुम बड़ अगम अथाह।

कमल गुण कही है तेरे गुण बहुते मैं एक ना जाने कमल गुण कही है जिह बा एक

निर्मल निर्मल सूर्या, निर्मल निर्मल सूर्या, सूचो सूचा सूचो सूचा, सूचो सूचा सूचो सूचा, अंत न अंता।

गुरुदेव बहादुर साहब कहते हैं, अपने आप को गुणी समझकर कीर्तन ना कर, मुझ में गुण है। हाँ, मुझे याद है एक बार मैं वैंकूवर बाहर गया तो एक रागी जत्था आया, वो थे रबाबी। अब वो रबाबी लोग जो होते हैं वो तो कहते हैं जब उनका बच्चा रोता है तो वो भी सुर में रोता है। भाई मर्दाने के खानदान से रबाबी लोग, लेकिन इतना गुण परमात्मा ने दिया, लेकिन अहंकार आ गया कि हम लोगों के सिवा और कोई गा ही नहीं सकता। सत्य बलवंडे ने भी अहंकार किया था कि हम ना कीर्तन करें तो कोई गुरु नानक को पूछने वाला थोड़ी था। तो वो कहने लगे हमारा कीर्तन उनके बाद में था, तो वो कहने लगे कोई है माई का लाल जो हमारे जैसा कोई शब्द पढ़ सके, जैसा हमने राग गाया कोई गा सके। तो हम पीछे बैठे, मैंने कहा भाई ये कीर्तन है, ये कोई दंगल थोड़ा ही है। एक बार प्यार से बोली, ये दंगल नहीं है, यहां कुश्ती नहीं होती, यहां तो जैसे जैसे इंसान में गुण भरते हैं वैसा वैसा इंसान नीचा होता है, निम्रता में आता है। जो यहां भी गुण गाकर अहंकारी हो गए तो फिर निम्रता कहां आएगी, बाहर दंगल में आएगी। यहां तो निम्रता सीखनी है, जितना जितना सेवा की गुरु अंगद देव जी ने उतने निम्रता में भरते गए। जैसे जैसे गुरसिखों ने गीत गाए वैसे वैसे निम्रता आती थी, नीचे होते चले गए।

पौड़ी नानक जी उपाय के लिखना में धर्म बहालिया उथे सच्चाई सच ने बड़ा चुनवाकड़ी जी जमा लिया था पायन कूड़िया हार मोका ले दो जिक चालिया।

0: पौड़ी सेव की किसन तो खाई दिनी सचो सहित्या ओनी मंदे पै न रखियो कर सुगुर धर्म कमाया ओनी दुनिया तोड़े बंदना अन पानी थोड़ा खाया तू बख्शीसी अगला निदे वह चढ़े सवाया वड्याई वड्डा पाया।
1: You are listening to SeekNet Radio, broadcasting live Gurbani Kirtan 24 hours a day from around the world.

अरे मेरा अरे भी साई भी प्राप्ति निराश होके फरीद एक दरख्त दे ठां बैठा है। दरख्त दे उत्ते चिड़िया बोलिया फरीद निराशता विच सी मन च ख्याल आया ए क्यों रौला पा रही है। चिड़िया वल तकिया चिड़ियो क्यों रौला पांदिया पर चिड़िया फिर बोल दी जंगल च रहन वाले पंछी बोल रहे हैं। फरीद नू गुस्सा आया चिड़ियो रौला पांदिया हो तुसी मर क्यों नहीं जांदी कहन दी देरी सी सारियां चिड़ियां धरती ते आके तड़फन लगी। फरीद ने तकिया हो मन तू केडी भुल कीती ए भी पंछी ते तू भी पंछी आखो श्री वाहिगुरु आऊं बलिहारी तिना पंछियां जंगल जिन्ना वास कंकर चुगन थल वसन रब न छोड़न पास तू केडी गलती की नाम जपण वाले दे मन च बड़ी कोमलता होंदी बड़ा दर्द होंदा है दुखीए नू वेख के दुखी हो जांदा है सुखीए नू वेख के निरंकार दा शुकराना करदा है। ए सिमरन वाले दी अवस्था है बंदगी करन वाले दी अवस्था। फरीद दे दिल च रहम आया चिड़ियो उड़ जाओ कहण दी देरी सी सारियां उड़ गईं। अच्छा मेरे अंदर तो शक्ति आ गई मार भी दिता ते जवाल भी दिता हों मैं आई फरीद तुर पिया गर्मी दी मौसम सामने पिंड है पिंड दे बार बार खूह खूह दे उत्ते एक नौजवान मुटियार पानी पी भर दी नेड़े आया। इस लड़की वल तक के फरीद ने कहा बेटा मैनू पानी पिला पर इस बीबी ने फरीद वल तकिया पानी दा डोल कढ़िया बाहर डोल दिता। फरीद ने फिर कहा बचड़ा मेनू पानी पिला मेनू डाढ़ी प्यास लगी मेरे लब सुख दे जांदे दूजा डोल कढ़िया भी डोल दिता। फरीद नू गुस्सा आ गया कितनी गुस्ताख लड़की इनू पता ही नहीं कि मैं फकीर हां मैनू प्यास लगी मैनू पानी नहीं देंदी डोल देंदी। अखां लाल करके फरीद ने कहा पानी क्यों नहीं पिलांदी। तीजी वेरी जिसले फरीद ने बचन कीता तो इस बीबी ने फरीद वल मुखातब होके कहा ओ फरीदा कोई ये जंगल दिया निखसमियां चिड़िया ना समझी जिन्हां नू मार के जवाल लिया मैं खसम वाली आखो श्री वाली। फरीद नू पानी दी प्यास तां बुझ गई ए प्यास लग गई सोचदा इहदा ए तां मेरा नाम भी जानदी ते जंगल विच चिड़ियां मारियां ते जवालियां जिथे इंसान तां की इंसान दी जात हैवान भी कोई नहीं इहनू किवें पता लग। फरीद ने कहा बेटी तू अज मेरा मान तोड़ दिता अला दस तैनू किवें पता लगा। तो इस माई रंग रतड़ी ने कहा फरीद ए सारी कृपा मेरे पति दी ए सारी बख्शिश मेरे पति दी है। किस तरह कहन लगी मेरी शादी हुई बाबल दा देश छड़ के मैं अपने साईं दे देश चली रात दा समा सी अचानक मेरे कन्ना च आवाज आई पानी मैं तकिया मेरे पति ने पानी मंगया सोचिया एक पासे लोक लज्जा है पहला दिन है लोकी की कहणगे दूजे पासे पति दा सच्चा ते सुच्चा प्यार लोक लज्जा नू फरीद मैं ला के एक पासे चा रखिया उठी ठंडे कड़े दे विच्चों ठंडे जल दा छन्ना भर के मैं पति दे पलंग कोल पहुंची
पर निरंकार दी ने रात दा समा सी मिठी मिठी पौन चल रही सी मेरे पति नु फिर नींदर आ गई। सोचिया जी मैं भी जाके सौ जावा पति प्यासा सुता पिया ए भी ठीक न ते जे जगाऊं दियां तां बेआराम। तो इस ख्याल च फरीद पति दे चरणा वल खड़ो गई लैके जल दा छन्ना। इस उड़ीक विच जिस वेले पति जागेगा पानी पी लवेगा। कोई समय दे बाद अचानक ही पति दे नेत्र खोले मेरे वल तके उस तकनी विच बड़ी बख्शी सी मेर सी। पुछे भागवान तू इथे क्यों खड़ोती है सारी विपता दे पानी पी लो। फरीद फरीद मेरा पति उठे मेरे हथा तू लैके पानी दा छन्ना अपने मुंह नाल जिसे लाया फरीद मैं सच दसदी हां पति दी बख्शिश द्वारा ज्यो ज्यो मेरे पति दे अंदर पानी जांदा सी त्यों त्यों मेरे अंदर रब आंदा सी। आ कुल रब पति दी प्रसन्नता भागवान तेरे उत्ते मालिक दियां मेहरां तेरे उत्ते साईं दी बख्शिश पति दी प्रसन्नता दे नाल फरीद मैनू तिन्ना लोकां दी सोझी आ कुल सी। बाबा जी बचन करदे सन वड्डे बाबा जी इस्त्री पति अगे तीन भब्बे पढ़ लवे बब्बा पला जी बब्बा भुल गई बब्बा पाणा पुत्र माता पिता अगे पढ़ लवे सिख गुरु अगे पढ़ लवे घर च रब मिल जाएगा खुशी बाहर जान दी लोड़ ही घर च रब। इस्त्री नू तां गुरमत विच बड़ी कंसेशन दिती है बड़ी रैत दिती है मेरे धन गुरु नानक जिस रब नू लोकी जंगलां च लभदे फिरदे धूणियां तपदे पुठा पुठे लटकते हैं किसी ने मोहन धारे है किसी ने सिर दे जसवा पा ली है रब की प्राप्ति वास्ते। पर मेरे धन गुरु नानक सचे पातशाह फरमाते हैं स्त्री अपने पति नूं परमेश्वर समझ लवे घर च रब मिल जाए मिल गया कईयां नूं मिले बड़िया साखियां गुरु इतिहास के अंदर। माई रजनी ने पिंगले नूं परमेश्वर समझ लिया माई रजनी ने पिंगले नूं कौड़ी नूं परमेश्वर समझिया पर प्यारी सात संगत मेरे पंजे पाहिबा ते मैनू पानी नहीं दिता पानी डोली क्यों जांदी है। माई रंगरती ने कहा फरीद कुछ मीलां उत्ते मेरी भैन दा घर है उन्हूं अग लग गई उत्थे कोई पानी दा प्रबंध नहीं इथो पानी पहुंचा रही खुशरी वाली होर हैरान। फरीद ने कहा मैनू सोझी नहीं पई मैं इतने साल बंदगी की माई रंगरती दे चरणा ते ढह पिया फरीद बेटी उमरा वालों तू भावे छोटी है पर गुणा वालों तू मेरे नाल वड्डी मैनू समत दे मैनू साई किस तरह मिलेगा कवन संयोग मिलो प्रभ अपने कवन गुण प्राण पत्र।

खोजत खोजत भई बैरागन। प्रभ दर्शन को हों फिरों तसाई, दीन दयाल कृपाल प्रभ नानक, साध संग मेरी जलन। माई रजनी ने, माई रंगकड़ी ने किया फरीदा, किसे मुर्शद की सेवा कर आखो श्री वाहेगुरु, प्राप्ति मुर्शद तू हो गई। कोई गुरु तारण कर, बाबा जी वचन कर दे सन, कितना जप तप क्यों ना कर लेवे इंसान, जितने तक गुरु वाला नहीं बनता वो जप तप सफल ही नहीं होता। कितना कर जी पातशाह ने इक्की वेरी तीर्थ यात्रा की थी, गंगा मैया दी स्नान की थी, हर साल जाते सन, और भी कर्म कांड दान पर करते सन, पर बैरागी ने कह दिता सी, ओ बाबा तो ता मेरा जन्म भ्रष्ट कर दिता है, क्योंकि तू निगुरा है आंखों श्री वाहेगुरु, मैं तेरे हथों पानी पी बैठा निगुरा गुरु जी। गुरु मिल गया भाई सब कुछ, असि गुरु वाले ता बनते हाँ जे अमृत छक लीए तो आखो श्री वाहेगुरु, फिर अस गुरु वाले बन जाते। गुरु का बड़ा मान है, ये गल च भाई पटा पाया वे कुत्ते दे ओनू कोई फिक्र नहीं, जे पटा ना आवे ओनू फिक्र ही, जेड़ा गुरु वाला बन गया वो अपने मालिक वाला खसम वाला बन गया। खसम का बड़ा मान, निगोरे का भी कोई चीज लावार कुत्तियां दे तरह मार मुकाया जाता, उन्होंने जीवन किसे काम है। गुरु की वड्डी शक्ति, गुरु का वड्डा आसरा है, गुरु का बड़ा मान है। बुले शाह ने लिखिया, ना मैं जब तक पूजा की थी, ना मैं गंगा नहाया, ना मैं पंज नमाजा पढ़िया, ना मैं हज कराया, बुले शाह मैंने मुर्शिद मिलिया उस एवं चा बख्शाया, एवं जिद ते मेहर कर दे भाई मेरा स्वामी। माई रंगी ने कहा फरीद, कोई गुरु तारण कर, चला जा आज मेर, ख्वाजा पीर पूरा गुरु है मुर्शिद है, ओनू जाके तारण कर। ख्वाजा पीर दे दर्शन कीते, हे मालिक दे प्यारे हो करो कृपा मेरे उत्ते, आवाज आई फरीद सेवा तू मेवा आखो श्री वाहे। फरीद रोज अमृत वेले पानी गर्म करके अपने पीर नु इनान करांदा है ख्वाजा पीर। कितना समा हो गया, 12 साल आ जाके इरला दिन है, पीर ने सोचिया भी कसवटी लगाइए इम्तिहान लगी फरीद दा, पूरा अंदरों सेवा करदा के बाहरों करदा, इम्तिहान ले अज बारिश हो रही, जिथों अग बाल के पानी गर्म करदा सी अग बुझ गई, किथों लियावा अग, उच्ची थां ते चढ़ गया। दास कई वारी अजमेर जिया है सके है, मुसलमाना का दूजा मक्का है अजमेर शरीफ, बड़ा सुंदर बनिया होया है, ओ जगह भी तकी जिथे फरीद ने उच्ची चढ़ के पहाड़ी के उते अग भी पाल की थी। दूर वेखे अग का लिशारा पिया, तुरन लगा ख्याल आया मना बारिश बड़ी जोर दी, किस तरह पहुंचा तो फरीद ने उससे ले श्लोक उचारिया।